0: फिर उसके बाद
1: अरे अरे भाई, अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठा। हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देशद्रोहियों की हम चमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये शब्द तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा।

0: सगळ्यांना 15 ऑगस्टच्या खूप खूप शुभेच्छा. पण हा जोश फक्त 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी पुरता नको. एका सैनिकासारखा दिवसाचे 24 तास आणि 365 दिवस राहायला पाहिजे. आणि तो जोश कसा ठेवावा ह्याच्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहेत रिटायर्ड कर्नल राकेश कुमार इन्फंट्री बटालियन. कर्नल साहब राम राम.
1: राम राम.
0: जय हिंद.
1: जय हिंद.
0: बहुत बहुत बधाई.
1: थैंक यू. आपको भी बहुत बहुत बधाई.
0: एक आम आदमी के लिए
1: जी
0: 15 अगस्त 26 जनवरी मतलब परेड देखना जुनून आ जाता है
1: जी.
0: आप लोगों के लिए जो सर्विसेज में है 21-21 साल ड्यूटी की है
1: जी,
0: उनके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का मायना क्या होता है?
1: हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ ना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बट इसके साथ साथ अगर आप बहुत गौर से देखें तो मुझे लगता है कि जितने भी अपने आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए एक तरीके से ये ड्यूटी को रिमाइंड करने वाला टाइम है. और इसका कारण ये है कि मुझे अपने पुराने बीते दिनों की याद है, और उस समय हम लोग जब फील्ड में सर्व कर रहे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए बहुत टेंस मोमेंट होता था, क्योंकि अगर आप या तो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं या फिर आप कश्मीर में पोस्टेड हैं, दोनों जगहों पे सरकार की पूरी कोशिश होती थी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई भी हादसा ना हो पाए, और इसके लिए हमें सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम करने पड़ते थे.
0: और दुश्मन उलट चाहता है.
1: बिल्कुल. अगर आप 15-20 साल के पहले की याददाश्त ताज़ा करें तो उस समय मिलिटेंसी जब अपने शबाब पे थी तो हमेशा ऐसा होता था कि इन दो खास दिनों को चुना जाता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर न्यूज़ में आने के लिए, इंटरनेशनल न्यूज़ में आने के लिए. तो हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता था. और आप ऐसे समझिए कि हमारी जो फौज होती थी वो 24 घंटे के लिए रेडी होकर के एक बार अपने COB से निकलती थी.
0: करण साहब 24 घंटे के लिए निकलते थे मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? ये हम लोग सुनते हैं और वो सुन सुनकर भैया हमको कुछ ताजुब भी नहीं लगता, मगर क्या होता है 24 घंटा एक पोस्ट पे रहना, और जबकि मालूम है मौत कभी भी आ सकती है.
1: जी, तो 24 घंटे जब हम या 24 घंटे या 24 घंटे से बाहर जब हम जाते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसा समय होता है जब आपके पास एरिया ज़्यादा बड़ा होता है और आप अपने COPs उस एरिया को नहीं कवर कर पाते हैं, और चूंकि सारी टुकड़ियां आपकी फील्ड में हैं आपके पास ये भी सुविधा नहीं है कि आपको उस जगह पे कोई रिप्लेस कर पाएगा. तो जनरली हम क्या करते हैं, हम पूरा अपने राशन का और जो लॉजिस्टिक्स होता है, लॉजिस्टिक्स इंक्लूड आपका राशन, पानी और एमिनेशन, ये तीनों आप अपने हिसाब से 24 से 48 घंटे के लिए पैक करके गाड़ी पे ले करके आप बाहर निकलते हैं. क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि जैसे 15 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छी तरह से याद है हम 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक हम लगातार बाहर रहते हैं, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हुआ तो मुश्किल से 4-5 घंटे के लिए, मैं फील्ड एरिया की बात कर रहा हूँ, पीस एरियाज की नहीं, तो फील्ड एरिया में हमको 5-6 घंटे के लिए वापस आकर के रेस्ट करने का मौका मिलता है एक 24 घंटे के साइकिल में, और शायद 15 अगस्त को तो वो भी नहीं पॉसिबल है. तो जहाँ पे हम उस समय एरियाज में थे, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में मैं पोस्टेड रहा हूँ और कश्मीर के एरियाज में भी, तो यही हमारा शेड्यूल होता था कि आप बाहर जाएं, पेट्रोलिंग करें, कोई इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आप पुलिस के बाद भी आप आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी दे रहे हैं. और उस पूरे एरिया को हम एक टर्म यूज़ करते थे मिलिट्री में, सेंसिटाइज. बेसिकली आप उस पूरे एरिया में कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी को जब भी आप नोटिस करते हैं आप तुरंत उसकी छानबीन करते हैं, और कोई भी अगर ऐसे आपको खबर मिलती है तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं. तो ये हमारी दिनचर्या होती थी. एंड इट यूज टू बी वेरी स्ट्रेसफुल. मतलब अगर मैं वैसे बोलूं कि आप लगातार, एंड जैसा आपने बोला कि आपको पता नहीं है कि कब किस समय कहाँ क्या होने वाला है, सो पूरे समय के लिए जितने देर के लिए आप अपने COB से बाहर हैं उस समय, उतने पूरे समय में आपको अपनी अलर्टनेस लेवल को पीक पे रखना, इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन.
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कि हमारा शरीर थकता है वैसा दिमाग भी थकता है, ब्रेन फॉग फैग आ जाता है, तो उसके लिए क्या वो धीरे धीरे आदत हो जाती है?
1: देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस में, मेरे ख्याल से ये मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, हमारे उसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, तो हमारी ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है कि आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और वो भी अपनी पीक परफॉर्मेंस पे। ये हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है और फौज में तो खैर बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज लड़ाई में जो सिचुएशन आती है वो अकल्पनीय है और आप उसको पहले से तैयारी तो क्या ही कर सकते हैं। तो जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे कैंप्स और ऐसे ट्रेनिंग इवेंट होते हैं जो कि 48 घंटे 72 घंटे लगातार चलते हैं, और ये जब हमने अपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब ट्रेनिंग करी थी तब भी हर एक टर्म के एंड में हमारे ऐसे कैंप्स होते थे और ऐसे ही हमारी ट्रेनिंग इवेंट्स होती थी जो कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती थी। और आप इस तरीके से ट्रेन होते हैं कि आप कभी भी
0: ये चीज ट्रेनिंग में करना
1: जी
0: और फील्ड पे जाके करना
1: जी,
0: कितना भयानक फर्क है।
1: मेरे ख्याल से जब आपने ऐसी ट्रेनिंग की हुई हो तो फील्ड में करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक तरीके से उसकी सोच विचार, उसकी प्लानिंग और उसका रिहर्सल पहले से किया होता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज रियलिटी में सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है और रियलिटी के हर सिचुएशन के लिए तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो आपने फिजिकल टफनेस और मेंटल टफनेस पहले से बना रखी है उसकी आपको मदद जरूर मिलती है वैसे सिचुएशन को एनकाउंटर करने के लिए।
0: अभी मेंटल टफनेस मतलब क्या करते हो आप लोग, मतलब जो कुछ बता सकते हो आप
1: जी। मेंटल टफनेस का मेरे हिसाब से फौज की जो ट्रेनिंग की जो शेड्यूल है उसमें मेरे ख्याल से वो दो तरीकों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हैं, एंड दैट इज हाउ इंडियन आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनका एक निश्चित रूप से जो उनका मेंटल मेकअप होता है वो, अगर हम आम भाषा में बोलें कि जो आम तौर पे जो सिविलियन लाइफ में लोग होते हैं उनसे थोड़ा बेहतर होता है। उसका कारण दो तरीके से हो सकता है। पहला तो जब आप वैसे भी देखें कि अगर आप अपनी दिनचर्या में रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपकी बॉडी बन रही है बट आपका मेंटल कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट नेचुरली, आप अपने बारे में ज्यादा अच्छा फील करते हैं, आपको किसी से बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको किसी नए व्यक्ति को अप्रोच करने में परेशानी नहीं होगी। हो सकता है पहले आप पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा घबराते हो पर जब आप लगातार उस तरह के डिसिप्लिन लाइफ को जी रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। सो ये एक पार्ट है कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज एंड टफ फिजिकल एंड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो कि एक तरीके से मेंटल टफनेस। और दूसरा मेंटल टफनेस बढ़ाने का दूसरा एक पहलू है जिसको हम हिंदी में अनिश्चितता या अनसर्टेन एनवायरमेंट अगर हम उसकी बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान हमारे को बहुत सारे समय इस तरीके से हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि हमको अचानक से कुछ नया या तो करने की ज़रूरत है या नए किसी सिचुएशन से निपटने की ज़रूरत है। तो अगर बार बार बार बार अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यू आर मोर रेडी फॉर एनीथिंग विच इज़ अनसर्टेन।
0: अच्छा,
1: सो एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये भी हमारे ट्रेनिंग का पार्ट ही है।
0: ओके,
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों से भी आज के स्कूल में एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों से भी क्लास 6 के बच्चों को भी अगर हम बोलें कि बेटा हमें पता नहीं है मार्च में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, लेकिन हमें पता नहीं कि किस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, तुम अपना चैप्टर रेडी करके रखो, हम 20 मिनट्स का क्विज किसी भी दिन ले सकते हैं, तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो बच्चों की तैयारी वो अलग लेवल की होगी, बजाय उनको मालूम हो पहले से कि मुझे 20 मार्च को 10 बजे वही क्विज लेना है। हो सकता है कि बच्चा फिर जो है वो 18 या 19 मार्च से ही पढ़ना शुरू करे और उसी समय अपना रिवीजन करके अगले दिन क्विज दे करके आ जाए। पर जब आपको नहीं पता होता है कि आप क्या आगे फेस करने वाले हैं, देन मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं।
0: सही है।
1: सो ये फॉर्मूला हमारी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है और मेरे ख्याल से हमारे मेंटल टफनेस में इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: अच्छा, आपको न्यूज आ गई
1: जी
0: कि वॉर फ्रंट को जाना है
1: जी,
0: तब क्या माहौल रहता आप सोल्जर्स में?
1: मेरे हिसाब से हमारे पास जब भी ऐसा मौका आया है जब हमें किसी तरह के खास ऑपरेशन में जाना है, युद्ध तो ऐसा मेरे करियर में कोई ऐसा प्रॉपर युद्ध तो हुआ नहीं,
0: लेकिन
1: वॉर लाइक सिचुएशन जरूर आती रहती है। यस यस, थ्रू आउट आती रहती है हमारे, क्योंकि मेरा, मैं इसको दुर्भाग्य बोलूंगा कि मेरा कमीशन तब हुआ जब कारगिल वॉर हमारा खत्म हुआ। उस समय हम अकेडमी में ही थे, एक समय ऐसा लग रहा था कि अकेडमी से भी जितने भी कैडेट्स हैं उनको वॉर फ्रंट पे भेजा जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जी वैसी बात हो रही थी, पर ऐसा मौका नहीं मिला। जी क्योंकि मई 99 में ये कारगिल शुरू हुआ और हम दिसंबर 99 में कमीशन होकर के हम बटालियन में पहुंचे, तो उसमें तो नहीं हुआ। और फिर ऑप पराक्रम के समय सिर्फ हमारी पोस्टरिंग हुई या हम बॉर्डर पे तैनात रहे, कोई ऐसा कोई बहुत बड़े स्केल पे तो कोई कुछ युद्ध जैसा नहीं हुआ। लेकिन इंसर्जेंसी के दौरान मैंने रेगुलरली ये वॉर लाइक सिचुएशन फेस किया है। तो मैं आपको एक शब्द में ये बताऊंगा कि जब भी ऐसा कुछ माहौल होता है तो वो उत्साह का माहौल होता है।
0: उत्साह का मतलब?
1: उत्साह का मतलब जैसे जब भी हमको एक्शन की खबर आती है, हम इस तरीके से ट्रेंड होते हैं। आप यंग हैं एंड आपने बहुत ही बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग पाई होती है, आपके पास आपके जवान भी उसी तरह के ट्रेंड वो हैं, और एक माहौल रहता है जैसे मुझे लगता है कि पुराने राजा महाराजाओं के समय जैसे वो छत्रियों के साथ जो माहौल रहता होगा कि वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं और उनको जब उनको एक्शन में जाने का मौका मिलता है तो एक तरीके से उन्होंने जो स्किल सीखा है उसको परफॉर्म करने का मौका है। तो ये आप उस तरीके से भी समझिए कि आप खुद एक एक्टर हैं और आपने अपनी विधा पे इतने दिनों तक काम किया, और अगर आपको कोई बढ़िया परफॉर्मेंस करने को मिले तो आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल होगी शायद आप उस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इतने दिनों से उसी एक्शन की वेट कर रहे हैं, उसी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, दो दो साल, डेढ़ साल।
0: एक मौत का भी तो डर रहता है ना, क्या नहीं रहता?
1: देखिए ये कहना तो गलत होगा कि मौत का डर नहीं रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने ट्रेनिंग्स में या हम अपनी दिनचर्या के हिसाब से हम उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालते और हम उस पर फोकस ही नहीं करते। हमारा फोकस ज्यादा ऐसे होता है कि हम अपनी युद्ध नीति, जो हम टैक्टिक्स बोलते हैं, वो कैसे रखें ताकि हम दुश्मन को एलिमिनेट कर पाएं। हम कभी अपनी कैजुअलिटी के बारे में कॉन्शियसली कभी सोचते नहीं। व्हेन इट हैपेंस मतलब वो तो एक आपका शायद बैक ऑफ माइंड में ऐसा हो सकता है, कम से कम मैंने तो कभी कॉन्शियसली फोकस नहीं किया जब भी हम ऑपरेशंस में गए, और उस एक्साइटमेंट में मुझे लगता है ये कभी दिमाग में आता भी नहीं।
0: जी और आपकी पोस्ट है यू आर अ लीडर,
1: जी
0: यू आर बॉस, यू आर कैप्टन,
1: जी
0: तो सोल्जर्स का कैसा रहता है जुनून, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? या कभी कभी सोल्जर्स का ही जुनून बहुत ज्यादा रहता है और आपको और जोश दिला देते हैं वो?
1: अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं आपको, तो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर हैं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दोज काइंड ऑफ सोल्जर्स, एंड दे आर एब्सोल्युटली द वर्ल्ड्स बेस्ट। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट हैं। उसके कुछ एक कारण है मेरे पास वैसा बोलने के। जिस पृष्ठभूमि से हमारी भारतीय सैनिक आते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उस पृष्ठभूमि में जो उनकी मॉरल वैल्यूज हैं, वो मुझे लगता है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। प्लस दर्द को सहने की जो उनकी काबिलियत है, दर्द बहुत तरीके से, अगर वो एक इस क्लास से आते हैं, मतलब जैसे हमारे गांव में जो कंडीशंस होते हैं वो टफ कंडीशंस हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं पहाड़ी रास्ता है। आज भी क्योंकि हमारी जो अभी भी फौज की जो सोल्जर्स की जो बैकग्राउंड है वो 90% गाँव से लोग आते हैं, शहर के अभी भी बहुत कम लोग इंडियन आर्मी में आते हैं। शहर से आने वाला तबका एक ऑफिसर काडर में ज़्यादा है, जवान तो अभी भी हमारे मेजोरिटी ऑफ देम वो गांव से ही आते हैं। तो उन्होंने जो हार्डशिप्स उस समय झेली होती है, और जो एक गांव में एक अभी भी माहौल है, मैं बहुत इंटीरियर्स में भी जाता हूं तो लोग इतने सिंपल हैं, इतने सीधे हैं, उनका जो मनोवैज्ञानिक जो उनकी एक बनावट है वो इतनी सिंपल, इतनी सादी, इतनी सरल है, बहुत ही उत्तम अगर मैं बोलूँ कि दर्जे के वो लोग हैं। अगर उनको हम पैसे के या शिक्षा के तौर पे ना आकें और सिर्फ उनकी मानवीय वैल्यूज़ या जो उनके गुणों की तुलना करें या उनकी बात करें, तो वो बहुत ही एक्सेलेंट लोग हैं और दे मेक ए वेरी फाइन सोल्जर।
0: एक आम आदमी
1: जी
0: सोचता है मिलिट्री में एंट्री करनी है,
1: जी
0: प्रिपरेशन करता है,
1: जी
0: एज अ सोल्जर जाता है, एज अ ऑफिसर जाता
1: जी
0: है। तो उसके बाद
1: जी
0: उसमें क्या परिवर्तन होते जाते हैं?
1: जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, और मैंने वो पूरी जर्नी,
0: आप नासिक से हो?
1: नहीं, मैं वैसे तो बिहार से हूं, और अभी मैं नासिक में करीब 8-10 साल से हमारा बेस नासिक में ही है, तो आप अभी मुझे नासिक का भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा जन्म बिहार के एक शहर मुजफ्फरपुर में हुआ, और शुरुआती की पढ़ाई मैंने वहीं करी, पेरेंट्स भी मेरे वहीं पे थे। मेरे पिताश्री रेलवेज में थे, इंडियन रेलवेज में, और उनकी वजह से हमारा थोड़ा ट्रांसफरेबल जॉब भी था, हम बिहार के ही बहुत सारे भागों में भी घूमते रहे। और फिर मैंने 12th के बाद, मैंने उस समय चूंकि थोड़ा सा एक तरीके से फैशन था उस समय कि जो भी थोड़े से बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे वो दिल्ली की तरफ रुख करते थे, तो मैं भी उस ट्रेंड का पार्ट था, और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिर बाकी की ग्रेजुएशन वगैरह करी हंसराज कॉलेज से, एंड फिर मैंने फौज ज्वाइन करी।
0: क्यों, फैमिली से कोई आर्मी में है?
1: नहीं, फैमिली से तो मेरे कोई भी आर्मी में नहीं था, और मुझे लगता है कि जो हमने बचपन में जो एक, अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो एक आदर्श नौकरी के तौर पे उस समय मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, क्योंकि मैं जिस समय पढ़ाई कर रहा था उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल सिचुएशन और बहुत सारी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही थी, उसमें से एक मंडल कमीशन बहुत जोर पकड़ा था, और मैं उसका मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, उस समय काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी, और जिस जगह पे मैं था बिहार में वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, और हम बहुत गर्व से नहीं कह सकते थे कि पॉलिटिक्स इज़ ए वेरी गुड चॉइस फॉर योर करियर और फॉर योर लाइफस्टाइल। तो और जो हमारी जो पृष्ठभूमि में जो थी वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर आपको नौकरी करना है तो आपके पास बहुत सीमित अवसर थे, या तो आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाइए, ये लिमिटेड चॉइस होती थी जो भी लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। और इसके अलावा मुझे एक दो ये करियर के बारे में उस समय भी पता था, एक तो फौज और एक रेलवेज, और जिसमें फौज को उस समय बहुत ही रेस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता था। एक दो कारण ये था कि फौज में मेरिटोक्रेसी उस समय भी थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था, आप अपनी मेरिट से सेलेक्ट होते थे, तो एक ये था कि शायद वहाँ जाने के बाद आपको सोशल रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलती थी इन सब बातों की वजह से, फौज की छवि बहुत क्लीन थी, तो ये बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे। आसपास के लोगों को हम जब देखते थे, हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी के पास भी फौज की एक छोटी सी छावनी होती थी, वहाँ पर भी कुछ फौजी लोग हमको दिखते थे, तो उनकी जो छवि थी या उनको जो आदर सत्कार एक समाज में मिलता था, मुझे लगता है कि इसकी जो छाप पड़ी हमारे बचपन में वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि अगर हम कुछ ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कुछ हम करना चाह रहे हैं सरकारी नौकरी में। मैंने CDS के थ्रू किया जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने CDS का एग्जाम लिया, और उसके बाद मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी में गया। जो NDA है वो 12th के बाद होता है, और CDS जो है वो ग्रेजुएशन के बाद की एंट्री है।
0: और वो टफ है रहता ना सिलेक्शन?
1: जी, आप कह सकते हैं, अगर नंबर्स के ख्याल से देखें तो उस समय भी 2-2.5 लाख लोग अपीयर होते थे, और सिलेक्शन मुश्किल से 400 लोगों का होता था। तो आप उस हिसाब से कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अच्छा कॉम्पिटिशन था।
0: सो आज के तारीख में कैसा डिसीजन था वो?
1: मेरे ख्याल से आज जो भी मैं कुछ हूँ उसी डिसीजन की बदौलत हूँ, और फौज ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, और आज जिस भी मुकाम पे मैं हूँ उसमें सारा क्रेडिट फौज को ही जाना चाहिए।
0: क्या था, कैसी थी जिंदगी?
1: मैं अगर ऐसे बोलूँ, आज जब मैं बीते 20-22 साल 25 साल को देखता हूँ तो बहुत ही इवेंटफुल जर्नी थी। जिस दिन से हमने कॉलेज को छोड़ करके और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ज्वाइन की, उस दिन से लाइफ हमारी बहुत इवेंटफुल रही है। मेरी पहली पोस्टिंग ही इंसर्जेंसी एरिया में हुई, नॉर्थ ईस्ट में, बटालियन हमारी आसाम में थी, और उस समय उस इलाके में उल्फा का बहुत प्रकोप था, आप उसको बोलें कि दहशत थी, और बहुत एक्टिव थी उस एरिया में उल्फा की मिलिटेंसी। तो वहाँ से जब हमारा, हम उस समय 3 साल हम उसी समय रहे आसाम में, और हमने बहुत सारी, इनफैक्ट मैंने अपना सबसे पहला जो गैलेंट्री अवार्ड लिया वो भी उसी टेन्योर के दौरान लिया।
0: क्या बात
1: है। तो
0: बहुत
1: सारे ऑपरेशंस किए, बहुत सारे एक्शंस उस समय किए, तो जो वो मेरे ख्याल से वो जो सेटिंग शुरू हुई इन्फेंट्री की लाइफ में, वो मुझे लगता है मैंने कमांड तक वो चलता रहा। वो कभी पता नहीं होता कि आप अगले क्षण में क्या करेंगे और कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ रोज के दौरान भी और ऐसे करियर में भी आपको कुछ ना कुछ नया करने को हमेशा ही मिलता रहता है। सो एक तो नई नई चीज़ों और नई नई अवसरों को देखना, नई नई चीज़ों के साथ अपने आप को ढालना और नई नई सिचुएशन को फेस करना, मुझे लगता है ये आपको मेंटली भी बहुत शार्प बनाता है।
0: और आप लोग जब फील्ड में रहते हो
1: जी,
0: तब आपकी जिंदगी एकदम अलग रहती है
1: जी।
0: जब फील्ड में नहीं रहते हो
1: जी,
0: तब एकदम अलग
1: जी।
0: क्या फर्क होता
1: है? देखिए, हमारी दो तरह की पोस्टिंग होती है, एक फील्ड पोस्टिंग होती है और एक पीस पोस्टिंग होती है। फील्ड पोस्टिंग बड़ी, मतलब जैसा ये नाम से ही पता चलता है, कि कुछ ऐसे इलाकों में हम जाते हैं जहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, और हमारा काम होता है उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोकना या उसको कंटेन करके रखना, या समटाइम्स उस जगह को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देना। तो वो तो ऑब्वियस है। लेकिन पीस जो पोस्टिंग होती है, वो हम उन पोस्टिंग्स को बोलते हैं जब हम कैंटोनमेंट में, जो शहर के अंदर कैंटोनमेंट्स बने हैं, हम उसमें वापस आते हैं। और एक तरीके से उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फैमिली लाइफ मिलती है, जो कि जनरली फील्ड पोस्टिंग्स में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अच्छा पहलू पीस का यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आपको थोड़ा सा एक नेचुरल रूटीन में आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप बताएं, और आप मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर से अगर आप बात करें, तो वो लोग आपको ये बोलेंगे कि पीस के दौरान हमको पीस तो नहीं मिलता,
0: मतलब
1: क्योंकि हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है पीस पोस्टिंग्स में। पीस पोस्टिंग्स में जनरली क्या होता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी ड्रिल्स जो हैं वॉर लाइक ड्रिल जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, फिर फंक्शंस बहुत होते हैं, इवेंट्स बहुत होते हैं, तो उसमें आपकी आपका बहुत सारा टाइम उस अरेंजमेंट करने में जाता है। तो एक तरीके से गोलियों के बिना वो भी एक वॉर लाइक सिचुएशन ही रहती है हमारे पास। तो पीस पोस्टिंग वैसे कहने के लिए है कि बट उसमें हमको पीस तो नहीं मिलता, बट ठीक है, इट्स अ गुड ब्रेक फ्रॉम द
0: मच नीडेड,
1: यस इट्स अ मच नीडेड ब्रेक, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ विद योर फैमिली। ये तो है ही है।
0: कर्नल साहब, क्या बोलते बोलते आधा घंटा हो गया
1: जी।
0: मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ शुरुआत हुई नहीं है ऐसा लग रहा है
1: जी,
0: मैं चाहता हूँ अगले संडे भी आप हमारे साथ रहे।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू, एंड जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: राम राम मंडली, भेड़िया।

0: 1956 अगोदरच्या दाही देशातल्या हिंदी संगीताचा हमराज कार्यक्रम आकार घेत आहे. मागील भागात आपण अभिनेते देव आनंद यांच्या बायोग्राफीच्या पहिल्या भागाचा आनंद घेतला. आज ओमपुरींच्या आवाजातला हा बायोग्राफीचा दुसरा भाग सादर आहे. देव आनंद यांचा हा चित्रपट प्रवास जवळजवळ 70 वर्षे रसिकांसमोर उलगडत होता. ऐकूया देव आनंद बायोग्राफी, नॅरेटेड बाय ओम पुरी, पार्ट 2.
1: ऐसे गिरे हुए इंसान हो तुम, मुझे मालूम न था. मेरा ख्याल तुम्हारे घर तो शर्म के तुम मुंह नहीं उठा सकोगे. रोगे, पछतावा दिखाओगे, माफिया मांगोगे मुझसे.
2: तुम्हारे से बाहर हुए जा रहे हो मेजर वर्मा. याद रखो, खून मेरा भी खौल सकता है.
1: तुम्हारा खून आनंद, किस बाजारी औरत का खून है ये मेजर?
3: हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन फिल्म हिस्टोरियंस का मानना है कि वहीदा जी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी. वहीदा रहमान के साथ ही वो अपने फिल्मी जीवन की सबसे बुलंद चोटी पर पहुंचे. फिल्म आर के नारायण के मूल उपन्यास गाइड पर आधारित थी. कला और बॉक्स ऑफिस दोनों मापदंडों पर गाइड खरीद

0: देव साहब की कामयाबी और लोकप्रियता की इस दास्तान का शायद सबसे सुनहरा पल है गाइड। नवकेतन के बैनर तले इकट्ठा उन महान कलाकारों ने गाइड का निर्माण किया जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक पहले इसी बैनर तले अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत की।
1: द लेट पर्ल बार्क, द नोबेल लॉरिएट वाज हियर। ही वाज डूइंग वांटिंग टू डू अ पिक्चर इन इंग्लिश फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस विद इंडियन एक्टर्स एंड शी वाज मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड शी आल्सो मेट मी एंड शी मस्ट हैव लाइक मी एंड वी हैव टू थ्री मीटिंग्स एंड शी सेड वी हैव टू डू पिक्चर टुगेदर इन इंग्लिश। So she said, what is it that you want to do? I said, let's hang on, see what I want to do. So, and at that moment, my film, Hum Dono, was an entry in Berlin Film Festival. And somebody gave me a book called The Guide, which I read, and I thought that was a good part for me. So I took the book to her, and she liked it. So we lost The Guide. Mahida, because he was a good dancer. And she was shaping up as a very fine actress. Her only problem at that moment was the language in English, but then Pearl Buck took it upon herself to teach her the lines. And I remember she used to rehearse her in English.
0: अंग्रेजी में बनी गाइड तो नहीं चली, पर इसके हिंदी वर्जन को आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया गया।

0: गाइड के अहम किरदार राजू को देवानंद की शैली में ढाला गया।
1: मार्को भी तो तुमसे दुखी है, लेकिन वो किस दीवारों से जाके अपना सर नहीं टकराता? वो कैसे गुफा में जाकर पत्थर के बुतों से जी बहला लेता है? मैं इसलिए कि वो आदमी है और तुम अपने आप को तड़पाती रहती हो इसलिए कि तुम औरत हो। गलत है रोजी, गलत है।
2: The English version of the guide could not suit the Indian audiences, never. So I said, let me finish the English version, send the English unit back, and then hang on to the Hindi version later. And they completely changed script, which my brother Vijayanand did, and I did so well. Goldie is very clever, he's very dynamic, he's very intelligent, super intelligent, and much more intelligent than I am. And I think he deserves much more than he got.
0: गाइड को न सिर्फ विजय आनंद के निर्देशन के लिए याद किया जाता है बल्कि इसके अनमोल गीतों के लिए भी, जो आज तक हिंदी फिल्मों के बेहतरीन गानों में गिने जाते हैं।

0: देवानंद की फिल्मी जिंदगी के इस बेहद रंगीन सफर का आनंद लेंगे इस ब्रेक के बाद। गाइड के बाद ही देव साहब ने खुद निर्देशन करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ऐसा करके वे अपने आप को और बेहतर तरीके से उभार सकते थे। तब से अब तक उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया। भले ही ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, परंतु लगभग हर फिल्म में देव साहब की अपनी जिंदा दिली और जोश का परिचय मिलता है, और लगभग हर फिल्म में ही उन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया। प्रेम पुजारी में देवानंद ने पहली बार निर्देशन में हाथ आजमाया। फिल्म के गाने भले ही पॉपुलर रहे, लेकिन फिल्म नहीं चली। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा न सिर्फ हिट हुई, बल्कि इसने हिंदुस्तानी औरत की एक दूसरी तस्वीर उभारी। जीनत अमान के साथ साथ हिंदी सिनेमा नारी चरित्र की पुरानी घिसी पिटी तस्वीर से दूर हटने लगा, और इस साहसिक काम का क्रेडिट काफी हद तक देवानंद को ही जाता।
1: हाँ, मुझे 6 महीने लगे थे लड़की को ढूंढने के लिए, और फिर किसी ने कहा कि जीनत एक पार्टी पर आ रही है, जीनत मिस एशिया बन चुकी है, उसको देखो एक बार। तो मैं उस पार्टी पर गया, वहाँ जीनत भी थी। जीनत को भी मालूम था कि देव आने वाला है, शायद वो भी जा रही थी। शी हैड अ सिगरेट पैक इन अ बैग एंड शी वांटेड टू स्मोक एंड शी टुक आउट अ सिगरेट एंड आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, सिटिंग नेक्स्ट टू हर, एंड आउट ऑफ शीयर कर्टसी शी ऑफर्ड अ सिगरेट टू मी, आई टुक इट and she lit it for me and I looked at her and the mischievous smile in her eyes was what my Janice was in the picture.
0: नए नए युवा कलाकारों को अपनी फिल्मों में चांस देना शायद वो राज है जो देव साहब को सदाबहार बनाए हुए है।
1: A lot of newcomers have gone out of Navketan. Lot of directors, lot of lyric writers, lot of music directors, lot of stars, male and female. Navketan is like an institution. Even now, anybody brings a great script to Navketan is open to do a picture.
0: देवानंद उन जादूगरों में हैं जिन्होंने मुंबई की रंग-बिरंगी फिल्मी दुनिया की माया कायम रखी है। उनकी दिलकश पर्सनालिटी के इर्द-गिर्द वो तस्वीरें उभरी हैं जो कभी भुलाए नहीं भूलेंगी। भले ही कई हम सफर साथी साथ छोड़ गए हों, देव साहब अपने आप में हौसलों का मंत्र बसाए हुए हैं, क्योंकि देवानंद हैं सदा के लिए।
1: When I talk of dreams, I talk of songs. There are no dreams without songs. I feel young all the time. I'm on a peculiar high all the time, and that suits my personality.

0: स्वातंत्र्य दिनाच्या मंगलमय शुभेच्छा. मंगलध्वनी आनंदाचा आणि देशभक्तीचा. आज आपण भारताचा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करत आहोत. या खास प्रसंगी रेडिओ मंगलध्वनी परिवारातर्फे आपल्या सर्व लाडक्या श्रोत्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचं स्मरण करूया आणि संगीताच्या विचारांच्या माध्यमातून देशभक्तीची नवी ऊर्जा घरोघरी पोहोचवूया. मंगलध्वनीचा सुरेल संगीतमय प्रवास असाच सुरू राहील. तुमची साथ अशीच सदैव सोबत असू द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
1: राम राम मंडळी, मी डॉक्टर राजेश नामदेव आहेर, म्हणजे तुमचा लाडका बाळू. बाळू ऑन एअर मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मंडळी, 15 ऑगस्ट, सगळ्यांना खूप जोश आलेला आहे. सगळ्यांना 15 ऑगस्टच्या खूप खूप शुभेच्छा. पण हा जोश फक्त 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी पुरता नको. एका सैनिकासारखा दिवसाचे 24 तास आणि 365 दिवस राहिला पाहिजे. आणि तो जोश कसा ठेवावा ह्याच्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहेत रिटायर्ड कर्नल राकेश कुमार, इन्फंट्री बटालियन. कर्नल साहेब, राम राम.
2: राम राम.
1: जय हिंद.
2: जय हिंद.
1: बहुत बहुत बधाई.
2: थैंक यू. आपको भी बहुत बहुत बधाई.
1: एक आम आदमी के लिए
2: जी
1: 15 अगस्त 26 जनवरी मतलब परेड देखना जुनून आ जाता है
2: जी.
1: आप लोगों के लिए जो सर्विसेज में है, 21-21 साल ड्यूटी की है
2: जी,
1: उनके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का मायना क्या होता है?
2: हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ ना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बट इसके साथ साथ अगर आप बहुत गौर से देखें तो मुझे लगता है कि जितने भी अपने आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए एक तरीके से ये ड्यूटी को रिमाइंड करने वाला टाइम है. और इसका कारण ये है कि मुझे अपने पुराने बीते दिनों की याद है, और उस समय हम लोग जब फील्ड में सर्व कर रहे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए बहुत टेंस मोमेंट होता था, क्योंकि अगर आप या तो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं या फिर आप कश्मीर में पोस्टेड हैं, दोनों जगहों पे सरकार की पूरी कोशिश होती थी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई भी हादसा ना हो पाए, और इसके लिए हमें सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम करने पड़ते थे.
1: और दुश्मन उलट जाता है.
2: बिल्कुल. अगर आप 15-20 साल के पहले की याददाश्त ताजा करें तो उस समय मिलिटेंसी जब अपने शबाब पे थी तो हमेशा ऐसा होता था कि इन दो खास

0: दिनों को चुना जाता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर न्यूज में आने के लिए, इंटरनेशनल न्यूज में आने के लिए। तो हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर होता था। और आप ऐसे समझिए कि हमारी जो फौज होती थी वो 24 घंटे के लिए रेडी होकर के एक बार अपने सीओबी से निकलती थी।
1: करण साहब, 24 घंटे के लिए निकलते थे मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? ये हम लोग सुनते हैं और वो सुन सुनकर अभी हमको कुछ ताजुब भी नहीं लगता, मगर क्या होता है 24 घंटा एक पोस्ट पे रहना, और जबकि मालूम है मौत कभी भी आ सकती है।
0: जी, तो 24 घंटे जब हम या 24 घंटे या 24 घंटे से बाहर जब हम जाते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसा समय होता है जब आपके पास एरिया ज़्यादा बड़ा होता है और आप अपने सीओपी से उस एरिया को नहीं कवर कर पाते हैं, और चूंकि सारी टुकड़ियां आपकी फील्ड में हैं आपके पास ये भी सुविधा नहीं है कि आपको उस जगह पे कोई रिप्लेस कर पाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम पूरा अपने राशन का जो लॉजिस्टिक्स होता है, लॉजिस्टिक्स इंक्लूड आपका राशन, पानी और एम्युनिशन, ये तीनों आप अपने हिसाब से 24 से 48 घंटे के लिए पैक करके गाड़ी पे ले करके आप बाहर निकलते हैं। क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि जैसे 15 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छी तरह से याद है हम 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक हम लगातार बाहर रहते हैं, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हुआ तो मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे के लिए, मैं फील्ड एरिया की बात कर रहा हूँ, पीस एरियाज की नहीं, तो फील्ड एरिया में हमको 5 घंटे 6 घंटे के लिए वापस आकर के रेस्ट करने का मौका मिलता है एक 24 घंटे के साइकिल में, और शायद 15 अगस्त को तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो जहाँ पे हम उस समय एरियाज में थे, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में मैं पोस्टेड रहा हूँ और कश्मीर के एरियाज में भी, तो यही हमारा शेड्यूल होता था कि आप बाहर जाएं, पेट्रोलिंग करें, कोई इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां पे आप पुलिस के बाद भी आप आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी दे रहे हैं। और उस पूरे एरिया को हम एक टर्म यूज करते थे मिलिट्री में, सेंसिटाइज, बेसिकली आप उस पूरे एरिया में कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी को जब भी आप नोटिस करते हैं आप तुरंत उसकी छानबीन करते हैं, और कोई भी अगर ऐसे आपको खबर मिलती है तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ये हमारी दिनचर्या होती थी, एंड इट यूज टू बी वेरी स्ट्रेसफुल। मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ कि आप लगातार, एंड जैसा आपने बोला कि आपको पता नहीं है कि कब किस समय कहाँ क्या होने वाला है, सो पूरे समय के लिए जितने देर के लिए आप अपने सीओबी से बाहर हैं उस समय, उतने पूरे समय में आपको अपनी अलर्टनेस लेवल को पीक पे रखना, इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन।
1: क्योंकि जैसे कहते हैं कि हमारा शरीर थकता है वैसा दिमाग भी थकता है, ब्रेन फॉग फैग आ जाता है, तो उसके लिए क्या वो धीरे धीरे आदत हो जाती है?
0: देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस में, मेरे ख्याल से ये मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, हमारे उसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, तो हमारी ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है कि आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और वो भी अपनी पीक परफॉर्मेंस पे। ये हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है, और फौज में तो खैर बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज लड़ाई में जो सिचुएशन आती है वो अकल्पनीय है और आप उसको पहले से तैयारी तो क्या ही कर सकते हैं। तो जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे कैंप्स और ऐसे ट्रेनिंग इवेंट होते हैं जो कि 48 घंटे 72 घंटे लगातार चलते हैं, और ये जब हमने अपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब ट्रेनिंग करी थी तब भी हर एक टर्म के एंड में हमारे ऐसे कैंप्स होते थे और ऐसी हमारी ट्रेनिंग इवेंट्स होती थी जो कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती थी, और आप इस तरीके से ट्रेन होते हैं कि आप कभी भी
1: ये चीज ट्रेनिंग में करना
0: जी
1: और फील्ड पे जाके करना
0: जी,
1: कितना भयानक फर्क है।
0: मेरे ख्याल से जब आपने ऐसी ट्रेनिंग की हुई हो तो फील्ड में करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक तरीके से उसकी सोच विचार, उसकी प्लानिंग और उसका रिहर्सल पहले से किया होता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज रियलिटी में सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है, और रियलिटी के हर सिचुएशन के लिए तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो आपने फिजिकल टफनेस और मेंटल टफनेस पहले से बना रखी है उसकी आपको मदद जरूर मिलती है वैसे सिचुएशन को एनकाउंटर करने के लिए।
1: अभी मेंटल टफनेस मतलब क्या करते हो आप लोग, मतलब जो कुछ बता सकते हो आप
0: जी। मेंटल टफनेस का मेरे हिसाब से फौज की जो ट्रेनिंग की जो शेड्यूल है उसमें मेरे ख्याल से वो दो तरीकों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इंडियन आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनका एक निश्चित रूप से जो उनका मेंटल मेकअप होता है वो अगर हम आम भाषा में बोलें कि जो आम तौर पे जो सिविलियन लाइफ में लोग होते हैं उनसे थोड़ा बेहतर होता है। उसका कारण दो तरीके से हो सकता है। पहला तो जब आप वैसे भी देखें कि अगर आप अपनी दिनचर्या में रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपकी बॉडी बन रही है बट आपका मेंटल कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट नेचुरली। आप अपने बारे में ज्यादा अच्छा फील करते हैं, आपको किसी से बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको किसी नए व्यक्ति को अप्रोच करने में परेशानी नहीं होगी। हो सकता है पहले आप पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा घबराते हो पर जब आप लगातार उस तरह के डिसिप्लिन लाइफ को जी रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। सो ये एक पार्ट है कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज एंड टफ फिजिकल एंड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो कि एक तरीके से मेंटल टफनेस। और दूसरा मेंटल टफनेस बढ़ाने का दूसरा एक पहलू है जिसको हम हिंदी में अनिश्चितता या अनसर्टेन एनवायरमेंट अगर हम उसकी बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान हमारे को बहुत सारे समय इस तरीके से हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि हमको अचानक से कुछ नया या तो करने की ज़रूरत है या नए किसी सिचुएशन से निपटने की ज़रूरत है। तो अगर बार बार बार बार अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यू आर मोर रेडी फॉर एनी थिंग विच इज़ अनसर्टेन।
1: अच्छा,
0: सो एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये भी हमारे ट्रेनिंग का पार्ट ही है।
1: ओके,
0: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों से भी आज के स्कूल में एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों से भी क्लास 6 के बच्चों को भी अगर हम बोलें कि बेटा हमें पता नहीं है मार्च में तुम्हारा एग्जाम होगा, लेकिन हमें पता नहीं कि किस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम अपना चैप्टर रेडी करके रखो, हम 20 मिनट्स का क्विज किसी भी दिन ले सकते हैं, तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो बच्चों की तैयारी वो अलग लेवल की होगी, बजाय उनको मालूम हो पहले से कि मुझे 20 मार्च को 10 बजे वही क्विज लेना है। हो सकता है कि बच्चा फिर जो है वो 18 या 19 मार्च से ही पढ़ना शुरू करे और उसी समय अपना रिवीजन करके अगले दिन क्विज दे करके आ जाए। पर जब आपको नहीं पता होता है कि आप क्या आगे फेस करने वाले हैं, देन मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं।
1: सही है।
0: सो ये फॉर्मूला हमारी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है और मेरे ख्याल से हमारे मेंटल टफनेस में इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
1: अच्छा, आपको न्यूज आ गई
0: जी
1: कि वॉर फ्रंट को जाना है।
0: जी,
1: तब क्या माहौल रहता आप सोल्जर्स में?
0: मेरे हिसाब से हमारे पास जब भी ऐसा मौका आया है जब हमें किसी तरह के खास ऑपरेशन में जाना है, युद्ध तो ऐसा मेरे करियर में कोई ऐसा प्रॉपर युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन जरूर आती रहती है। यस थ्रू आउट आती रहती है हमारे, क्योंकि मेरा, मैं इसको दुर्भाग्य बोलूंगा कि मेरा कमीशन तब हुआ जब कारगिल वॉर हमारा खत्म हुआ। उस समय हम अकेडमी में ही थे, एक समय ऐसा लग रहा था कि अकेडमी से भी जितने भी कैडेट्स हैं उनको वॉर फ्रंट पे भेजा जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जी, वैसी बात हो रही थी पर ऐसा मौका नहीं मिला। जी, क्योंकि मई 99 में ये कारगिल शुरू हुआ और हम दिसंबर 99 में कमीशन होकर के हम बटालियन में पहुंचे, तो उसमें तो नहीं हुआ। और फिर ऑफ पराक्रम के समय सिर्फ हमारी पोस्चरिंग हुई या हम बॉर्डर पे तैनात रहे, कोई ऐसा कोई बहुत बड़े स्केल पे तो कोई कुछ युद्ध जैसा नहीं हुआ। लेकिन इंसर्जेंसी के दौरान मैंने रेगुलरली ये वॉर लाइक सिचुएशन फेस किया है, तो मैं आपको एक शब्द में ये बताऊंगा कि जब भी ऐसा कुछ माहौल होता है तो वो उत्साह का माहौल होता है।
1: उत्साह का मतलब?
0: उत्साह का मतलब जैसे जब भी हमको एक्शन की खबर आती है, हम इस तरीके से ट्रेंड होते हैं, आप यंग हैं एंड आपने बहुत ही बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग पाई होती है, आपके पास आपके जवान भी उसी तरह के ट्रेंड वो हैं, और एक माहौल रहता है जैसे मुझे लगता है कि पुराने राजा महाराजाओं के समय जैसे वो क्षत्रियों के साथ जो माहौल रहता होगा कि वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं और उनको जब उनको एक्शन में जाने का मौका मिलता है तो एक तरीके से उन्होंने जो स्किल सीखा है उसको परफॉर्म करने का मौका है। तो ये आप उस तरीके से भी समझिए कि आप खुद एक एक्टर हैं और आपने अपनी विधा पे इतने दिनों तक काम किया, और अगर आपको कोई बढ़िया परफॉर्मेंस करने को मिले तो आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल होगी शायद आप उस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इतने दिनों से उसी एक्शन की वेट कर रहे हैं, उसी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, दो साल डेढ़ डेढ़ साल।
1: एक मौत का भी तो डर रहता है ना, क्या नहीं रहता?
0: देखिए, कहना तो गलत होगा कि मौत का डर नहीं रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने ट्रेनिंग्स में या हम अपनी दिनचर्या के हिसाब से हम उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालते, और हम उस पर फोकस ही नहीं करते। हमारा फोकस ज्यादा ऐसे होता है कि हम अपनी युद्ध नीति, जो हम टैक्टिक्स बोलते हैं, वो कैसे रखें ताकि हम दुश्मन को एलिमिनेट कर पाएं। हम कभी अपनी कैजुअलिटी के बारे में कॉन्शियसली कभी सोचते नहीं। व्हेन इट हैपेंस मतलब वो तो एक आपका शायद बैक ऑफ माइंड में ऐसा हो सकता है। कम से कम मैंने तो कभी कॉन्शियसली फोकस नहीं किया जब भी हम ऑपरेशंस में गए, और उस एक्साइटमेंट में मुझे लगता है ये कभी दिमाग में आता भी नहीं।
1: जी, और आपकी पोस्ट है, यू आर अ लीडर,
0: जी,
1: यू आर बॉस, यू आर कैप्टन,
0: जी।
1: तो सोल्जर्स का कैसा रहता है जुनून, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? या कभी कभी सोल्जर्स का ही जुनून बहुत ज्यादा रहता है और आपको और जोश दिला देते हैं वो?
0: अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं आपको, तो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर हैं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दोज काइंड ऑफ सोल्जर्स, एंड दे आर एब्सोल्युटली द वर्ल्ड्स बेस्ट। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट हैं। उसके कुछ एक कारण है मेरे पास वैसा बोलने के। जिस पृष्ठभूमि से हमारी भारतीय सैनिक आते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उस पृष्ठभूमि में जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो मुझे लगता है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। प्लस दर्द को सहने की जो उनकी काबिलियत है, दर्द बहुत तरीके से, अगर वो एक इस क्लास से आते हैं, मतलब जैसे हमारे गांव में जो कंडीशंस होते हैं वो टफ कंडीशंस हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं पहाड़ी रास्ता है। आज भी क्योंकि हमारी जो अभी भी फौज की जो सोल्जर्स की जो बैकग्राउंड है, वो 90% गांव से लोग आते हैं, शहर के अभी भी बहुत कम लोग इंडियन आर्मी में आते हैं। शहर से आने वाला तबका एक ऑफिसर काडर में ज़्यादा है, जवान तो अभी भी हमारे मेजोरिटी ऑफ देम वो गांव से ही आते हैं। तो उन्होंने जो हार्डशिप्स उस समय झेली होती है, और जो एक गांव में एक अभी भी माहौल है, मैं बहुत इंटीरियर्स में भी जाता हूं, तो लोग इतने सिंपल हैं, इतने सीधे हैं, उनका जो मनोवैज्ञानिक जो उनकी एक बनावट है, वो इतनी सिंपल, इतनी सादी, इतनी सरल है, बहुत ही उत्तम, अगर मैं बोलूँ कि दर्जे के वो लोग हैं। अगर उनको हम पैसे के या शिक्षा के तौर पे ना आकें और सिर्फ उनकी मानवीय वैल्यूज़ या जो उनके गुणों की तुलना करें या उनकी बात करें, तो वो बहुत ही एक्सेलेंट लोग हैं, और दे मेक ए वेरी फाइन सोल्जर।
1: एक आम आदमी
0: जी
1: सोचता है मिलिट्री में एंट्री करने,
0: जी
1: प्रिपरेशन करता है,
0: जी
1: एज अ सोल्जर जाता है, एज अ ऑफिसर जाता है,
0: जी जी,
1: तो उसके बाद
0: जी
1: उसमें क्या परिवर्तन होते जाता है?
0: जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, और मैंने वो पूरी जर्नी,
1: आप नासिक से हो?
0: नहीं, मैं वैसे तो बिहार से हूं, और अभी मैं नासिक में करीब 8-10 साल से हमारा बेस नासिक में ही है, तो आप अभी मुझे नासिक का भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा जन्म बिहार के एक शहर मुजफ्फरपुर में हुआ, और शुरुआती की पढ़ाई मैंने वहीं करी, पेरेंट्स भी मेरे वहीं पे थे। मेरे पिताश्री रेलवेज में थे, इंडियन रेलवेज में, और उनकी वजह से हमारा थोड़ा ट्रांसफरेबल जॉब भी था, हम बिहार के ही बहुत सारे भागों में भी घूमते रहे। और फिर मैंने 12th के बाद, मैंने उस समय चूँकि थोड़ा सा एक तरीके से फैशन था उस समय कि जो भी थोड़े से बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे वो दिल्ली की तरफ रुख करते थे, तो मैं भी उस ट्रेंड का पार्ट था, और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिर बाकी की ग्रेजुएशन वगैरह करी हंसराज कॉलेज से, एंड फिर मैंने फौज ज्वाइन करी।
1: क्यों, फैमिली से कोई आर्मी में है?
0: नहीं, फैमिली से तो मेरे कोई भी आर्मी में नहीं था, और मुझे लगता है कि जो हमने बचपन में जो एक, अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, तो एक आदर्श नौकरी के तौर पे उस समय मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, क्योंकि मैं जिस समय पढ़ाई कर रहा था उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल सिचुएशन और बहुत सारी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही थी, उसमें से एक मंडल कमीशन बहुत जोर पकड़ा था, और मैं उसका मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, उस समय काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी, और जिस जगह पे मैं था बिहार में, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, और हम बहुत गर्व से नहीं कह सकते थे कि पॉलिटिक्स इज़ ए वेरी गुड चॉइस फॉर योर करियर और फॉर योर लाइफ स्टाइल। तो और जो हमारी जो पृष्ठभूमि में जो थी वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर आपको नौकरी करना है तो आपके पास बहुत सीमित अवसर थे, या तो आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाइए, ये लिमिटेड चॉइस होती थी जो भी लोग पढ़ने लिखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। और इसके अलावा मुझे एक दो ये करियर के बारे में उस समय भी पता था, एक तो फौज और एक रेलवेज, और जिसमें फौज को उस समय बहुत ही रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता था। एक दो कारण ये था कि फौज में मेरिटोक्रेसी उस समय भी थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था, आप अपनी मेरिट से सेलेक्ट होते थे। तो एक ये था कि शायद वहां जाने के बाद आपको सोशल रिकॉग्निशन ज्यादा मिलती थी इन सब बातों की वजह से, फौज की छवि बहुत क्लीन थी। तो ये बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे आसपास के लोगों को हम जब देखते थे। हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी के पास भी फौज की एक छोटी सी छावनी होती थी, वहां पर भी कुछ फौजी लोग हमको दिखते थे। तो उनकी जो छवि थी या उनको जो आदर सत्कार एक समाज में मिलता था, मुझे लगता है कि इसकी जो छाप पड़ी हमारे बचपन में वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि अगर हम कुछ ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कुछ हम करना चाह रहे हैं सरकारी नौकरी में। मैंने CDS के थ्रू किया जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने CDS का एग्जाम लिया और उसके बाद मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया। जो NDA है वो 12th के बाद होता है और CDS जो है वो ग्रेजुएशन के बाद की एंट्री है।
1: और वो बहुत टफ रहता है ना सिलेक्शन?
0: जी आप कह सकते हैं, अगर नंबर्स के ख्याल से देखें तो उस समय भी 2-2.5 लाख लोग अपीयर होते थे और सिलेक्शन मुश्किल से 400 लोगों का होता था। तो आप उस हिसाब से कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अच्छा कॉम्पिटिशन था।
1: सो आज के तारीख में कैसा डिसीजन था?
0: मेरे ख्याल से आज जो भी मैं कुछ हूँ उसी डिसीजन की बदौलत हूँ, और फौज ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, और आज जिस भी मुकाम पे मैं हूँ उसमें सारा क्रेडिट फौज को ही आना चाहिए।
1: क्या था, कैसी थी जिंदगी?
0: मैं अगर ऐसे बोलूँ, आज जब मैं बीते 20-22 साल 25 साल को देखता हूँ तो बहुत ही इवेंटफुल जर्नी थी। जिस दिन से हमने कॉलेज को छोड़ करके और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ज्वाइन की, उस दिन से लाइफ हमारी बहुत इवेंटफुल रही है। मेरी पहली पोस्टिंग ही इंसर्जेंसी एरिया में हुई, नॉर्थ ईस्ट में। बटालियन हमारी आसाम में थी और उस समय उस इलाके में उल्फा का बहुत प्रकोप था, आप उसको बोलें कि दहशत थी, और बहुत एक्टिव थी उस एरिया में उल्फा की मिलिटेंसी। तो वहाँ से जब हमारा, हम उस समय 3 साल हम उसी समय रहे आसाम में, और हमने बहुत सारी, इनफैक्ट मैंने अपना सबसे पहला जो गैलेंट्री अवार्ड लिया वो भी उसी टेन्योर के दौरान लिया।
1: क्या
0: तो बहुत सारे ऑपरेशंस किए, बहुत सारे एक्शंस उस समय किए। तो जो वो मेरे ख्याल से वो जो सेटिंग शुरू हुई इन्फेंट्री की लाइफ में, वो मुझे लगता है मैंने कमांड तक वो चलता रहा। वो कभी पता नहीं होता कि आप अगले मिशन में क्या करेंगे और कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ रोज के दौरान भी और ऐसे करियर में भी आपको कुछ ना कुछ नया करने को हमेशा ही मिलता रहता है। सो एक तो नई नई चीज़ों और नई नई अवसरों को देखना, नई नई चीज़ों के साथ अपने आप को ढालना और नई नई सिचुएशन को फेस करना, मुझे लगता है ये आपको मेंटली भी बहुत शार्प बनाता है।
1: और आप लोग जब फील्ड में रहते हो
0: जी,
1: तब आपकी जिंदगी एकदम अलग रहती है
0: जी।
1: जब फील्ड में नहीं रहते हो
0: जी,
1: तब एकदम अलग
0: जी।
1: क्या फर्क होता
0: है? देखिए, हमारी दो तरह की पोस्टिंग होती है, एक फील्ड पोस्टिंग होती है और एक पीस पोस्टिंग होती है। फील्ड पोस्टिंग बड़ी, मतलब जैसा ये नाम से ही पता चलता है कि कुछ ऐसे इलाकों में हम जाते हैं जहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, और हमारा काम होता है उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोकना या उसको कंटेन करके रखना, या समटाइम्स उस जगह को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देना। तो वो तो ऑब्वियस है। लेकिन पीस जो पोस्टिंग होती है, वो हम उन पोस्टिंग्स को बोलते हैं जब हम कैंटोनमेंट में, जो शहर के अंदर कैंटोनमेंट्स बने हैं, हम उसमें वापस आते हैं। और एक तरीके से उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फैमिली लाइफ मिलती है, जो कि जनरली फील्ड पोस्टिंग्स में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अच्छा पहलू पीस का यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आपको थोड़ा सा एक नेचुरल रूटीन में आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप बताएं, और आप मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर से अगर आप बात करें, तो वो लोग आपको ये बोलेंगे कि पीस के दौरान हमको पीस तो नहीं मिलता,
1: मतलब
0: क्योंकि हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है पीस पोस्टिंग्स में। पीस पोस्टिंग्स में जनरली क्या होता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी ड्रिल्स जो हैं, वॉर लाइक ड्रिल्स जो हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं, फिर फंक्शंस बहुत होते हैं, इवेंट्स बहुत होते हैं, तो उसमें आपकी आपका बहुत सारा टाइम उस अरेंजमेंट करने में जाता है। तो एक तरीके से गोलियों के बिना वो भी एक वॉर लाइक सिचुएशन ही रहती है हमारे पास। तो पीस पोस्टिंग वैसे कहने के लिए है कि बट उसमें हमको पीस तो नहीं मिलता, बट ठीक है, इट्स ए गुड ब्रेक फ्रॉम द
1: मच नीडेड।
0: यस, इट्स ए मच नीडेड ब्रेक एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ विद योर फैमिली। ये तो है ही है।
1: कर्नल साहब, क्या बोलते बोलते आधा घंटा हो गया
0: जी,
1: मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ शुरुआत हुई नहीं है ऐसा लग रहा है
0: जी,
1: मैं चाहता हूँ अगले संडे भी आप हमारे साथ रहे।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू एंड जय हिंद।
0: जय हिंद।
1: राम राम मंडली, भेड़िया।

0: 1956 अगोदरच्या दाही देशातल्या हिंदी संगीताचा हमराज कार्यक्रम आकार घेत आहे. मागील भागात आपण अभिनेते देव आनंद यांच्या बायोग्राफीच्या पहिल्या भागाचा आनंद घेतला. आज ओमपुरींच्या आवाजातला हा बायोग्राफीचा दुसरा भाग सादर आहे. देव आनंद यांचा हा चित्रपट प्रवास जवळजवळ 70 वर्षे रसिकांसमोर उलगडत होता. ऐकूया देव आनंद बायोग्राफी, नॅरेटेड बाय ओम पुरी, पार्ट 2.
1: ऐसे गिरे हुए इंसान हो तुम, मुझे मालूम न था. मेरा ख्याल तुम्हारे घर तो शर्म के तुम नहीं उठा सकोगे. रोगे, पछतावा दिखाओगे, माफिया मांगोगे मुझसे.
2: तुम हद से बाहर हुए जा रहे हो मेजर वर्मा. याद रखो, खून मेरा भी खौल सकता है.
1: तुम्हारा खून आनंद, किस बाजारी औरत का खून है ये मेजर?
3: हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन फिल्म हिस्टोरियंस का मानना है कि वहीदा जी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी. वहीदा रहमान के साथ ही वो अपने फिल्मी जीवन की सबसे बुलंद चोटी पर पहुंचे. फिल्म आर के नारायण के मूल उपन्यास गाइड पर आधारित थी. कला और बॉक्स ऑफिस दोनों मापदंडों पर गाइड खरीद

0: देवानंद की फिल्मी जिंदगी के इस बेहद रंगीन सफर का आनंद लेंगे इस ब्रेक के बाद। गाइड के बाद ही देव साहब ने खुद निर्देशन करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ऐसा करके वे अपने आप को और बेहतर तरीके से उभार सकते थे। तब से अब तक उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया। भले ही ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, परंतु लगभग हर फिल्म में देव साहब की अपनी जिंदा दिली और जोश का परिचय मिलता है, और लगभग हर फिल्म में ही उन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया। प्रेम पुजारी में देवानंद ने पहली बार निर्देशन में हाथ आजमाया। फिल्म के गाने भले ही पॉपुलर रहे, लेकिन फिल्म नहीं चली। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा न सिर्फ हिट हुई, बल्कि इसने हिंदुस्तानी औरत की एक दूसरी तस्वीर उभारी। जीनत अमान के साथ साथ हिंदी सिनेमा नारी चरित्र की पुरानी घिसी पिटी तस्वीर से दूर हटने लगा, और इस साहसिक काम का क्रेडिट काफी हद तक देवानंद को ही जाता।
1: हाँ, मुझे 6 महीने लगे थे लड़की को ढूंढने के लिए, और फिर किसी ने कहा कि जीनत एक पार्टी पर आ रही है, जीनत मिस एशिया बन चुकी है, उसको देखो एक बार। तो मैं उस पार्टी पर गया, वहाँ जीनत भी थी। जीनत को भी मालूम था कि देवा आने वाला है, शायद वो भी जा रही थी। शी हैड अ सिगरेट पैक इन अ बैग एंड शी वांटेड टू स्मोक एंड शी टुक आउट अ सिगरेट एंड आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, सिटिंग नेक्स्ट टू हर, एंड ऑल्दो शी कर्टसीड, शी ऑफर्ड अ सिगरेट टू मी, आई टुक इट and she lit it for me and I looked at her and the mischievous smile in her eyes was what my Janice was in the picture.
0: नए नए युवा कलाकारों को अपनी फिल्मों में चांस देना शायद वो राज है जो देव साहब को सदाबहार बनाए हुए हैं।
1: A lot of newcomers had gone out of Navkirtan. A lot of directors, a lot of lyric writers, a lot of music directors, a lot of stars, male and female. Navkirtan is like an institution. Even now, anybody brings a great script to Navkirtan is open to do a picture.
0: देवानंद उन जादूगरों में हैं जिन्होंने मुंबई की रंग-बिरंगी फिल्मी दुनिया की माया कायम रखी है। उनकी दिलकश पर्सनालिटी के इर्द-गिर्द वो तस्वीरें उभरी हैं जो कभी भुलाए नहीं भूलेंगी। भले ही कई हम सफर साथी साथ छोड़ गए हों, देव साहब अपने आप में हौसलों का मंत्र बसाए हुए हैं, क्योंकि देवानंद हैं सदा के लिए।
1: When I talk of dreams, I talk of songs. There are no dreams without songs.
2: फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: I feel young all the time. I'm on a peculiar high all the time, and that suits my personality.

0: उसके बाद
1: अरे अरे भाई अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठा। हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देश द्रोहियों की हम चमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये सब तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।